हरि हिरण्यवपोर धृत शंख चक्र ब्रह्मा मुरारी स्थिपरंतकारी भानु शशि भूमिस्थित बुधश्च गुरुश्च शुक्र स्वनिराहु केतव।